0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 568-54 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नमस्ते, म गायक जगदीश तमाल, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम 91.3।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज।

राम राम संजेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर में शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। भोटेको सीमा अहिलेक विनाशकारी बाढ़ी तथा विपदजन्य घटनास्थल प्रभावित नागरिक को राहत तथा उद्धार का लाख राजपुर गांवपालिका से 10 लाख रूपया सहयोग करना निर्णय कर राखल। आज बैठक राजपुर गांवपालिका कार्यपालिका से बैठक से अब 2083-84 का लाख स्वीकृत वार्षिक बजट तथा कार्यक्रम अंतर्गत विपदजन्य घटनास्थल सुरजित समस्या को व्यवस्थापन शीर्षक से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय में अलग प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में रू 10 लाख रूपया सहायता रकम प्रदान करना निर्णय करलक हो। बैठक से भोटेकोशी बाढ़ी तथा अन्य विपदजन्य घटना में पर्कन ज्यान गुमिलक सबको मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती शोक संतप्त परिवार प्रति गहिरो समवेदना प्रकट कर राखल। ओस्तक घाइतियों कनक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना करती संपर्क विहीन रलक नागरिक कनक झट्ट से झट्ट सकुशल उद्धार कर अपेक्षा कर राखल। संपर्क विहीन नागरिक कनक खोजी उद्धार तथा राहत कला का संबंधित निकाय से आवश्यक समन्वय करना निर्णय समेत गांव पालिका से कर राखल। विपद कठित घटनामा पीड़ित परिवार सहयोग पुगिना उद्देश्य से राजपुर गांवपालिका से उद्धार कोष में आर्थिक सहयोग करना निर्णय करलक जना राखल। सड़क डिवीजन का कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर रहल। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग का सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी का अनुसार जयसवाल ओ तत्कालीन वन अधिकृत राजू छेत्री विरूद्ध 81,37,900 रूपया भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हो रहल। उस्तक राप्ती गांवपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट विरूद्ध 58,45,825 रूपया राप्ती गांवपालिका वड़ा नंबर 1 का वड़ा अध्यक्ष गेमी खड़का विरूद्ध 3,71,000 रूपया वड़ा नंबर 4 का वड़ा अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी विरूद्ध 1,41,226 रूपया अभिमान चौधरी विरूद्ध 73,646 रूपया नंदू गिरी विरूद्ध 30,970 रूपया छविन्द्र प्रसाद भंडारी विरूद्ध 1,41,226 रूपया ओ केशर बहादुर चौधरी विरूद्ध 36,610 रूपया भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुईलक आयोग जना राखल। आयोग का अनुसार हुकनक विरूद्ध राप्ती गांवपालिका वड़ा नंबर 1 पाखापानी से लमई नगरपालिका वड़ा नंबर 4 अनुरासम्म का पूर्व पश्चिम राजमार्ग का दाया बाया दोनों किनार का सड़क क्षेत्र अधिकार भीतर काजगिलक का सेमरा सिसवा लगायत विभिन्न जात का रूखवा हानि नोक्सानी कैकन भ्रष्टाचार करलक मुद्दा दायर हो रहल। भ्रष्टाचार निवारण एन 2059 का दफा 17 बमोजिम का कसूर में जरिवाना हुई माग दाबी लेकन आज विशेष अदालत काठमाडौं में आरोप विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुईलक आयोग जना राखल। रसुआ बाड़ी में पर्कन थरुआ जन्नी सहित दांग थप एक जनक संपर्कविहीन हुईनामा राजपुर गांवपालिका साथ एराना का 40 वर्षीय दीपेन्द्र बुढ़ामगर और उहां का जन्नी 37 वर्षीय विमती खत्री ओ दांग तुलसीपुर 19 का 29 वर्षीय दिल बहादुर पुन संपर्कविहीन का सूचना में थप बिलवाट उहां रसुआ गढ़ी में काम करती ऐलक बुजगिल रसुआ बाड़ी पहिरो पाछ संपर्कविहीन होना दांग में नागरिक का संख्या 52 पुगल बा। दिनकुन 2 बजे 50 मिनट समय का अध्यावधिक विवरण अनुसार हालसम संपर्कविहीन होना में 45 जना पुरूष और 7 जना महिला रहल बाट ऊ मध्य 5 जना पुरूष संपर्क में आरख लकलश 40 जना पुरूष और 7 जना महिला कैकन 47 जना अही सम्पर्कविहीन बाट हुकनक खोज तथा उद्धार कार्य जारी रलक जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ जना राखल। जिल्ला सहकारी संघ दांग से बाढ़ी पीड़ित सहयोग करना निर्णय कर राखल। वस्तक संघ से विभिन्न जिला में बाढ़ी का कारण हुईलक जनधन का क्षतिप्रति दुख व्यक्त करती राहत तथा उद्धार में तीव्रता दिय आग्रह कर राखल। संघ से आपन सामुदायिक विकास कोष से प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप राहत कोष में 10,100 रूपया आर्थिक सहयोग करना निर्णय कर राखल। संघ का 36 बैठक से रसुआ नुआकोट धादिंग और चितौन जिला में बाढ़ी का कारण भारी जनधन का क्षति हुईलक प्रति दुख व्यक्त करती मृतक प्रति श्रद्धांजलि और पीड़ित परिवार प्रति समवेदना व्यक्त करलक हो। बैठक से आई फिर धीर नागरिक बेपत्ता रलकति हुकनक खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्रता देह बनाएकला संबंधित पक्ष आग्रह कर राखल। संघ से दांग में अलग सहकारी संघ संस्था को नकला समेत विपद के अवस्था में सहयोग में जुटा आग्रह कर जना राखल।
ओ रसुवामा इलाका विनाशकारी बाढ़ी से प्रभावित परिवार का राहत तथा उद्धार में सहयोग पुगे क्ला दांग गढ़वा गांवपालिक से 5,00,000 रूपया आर्थिक सहयोग करना निर्णय कर राखल। आज फैसला गढ़वा गांवपालिक स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति से बैठक से रसुआ बाढ़ी से प्रभावित परिवार कला उक्त रकम सहयोग करना निर्णय करलक हो। गांवपालिक अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरियल के अध्यक्षता में बैसल बैठक से विपद का एक घड़ी में पीड़ित परिवार हन राहत उपलब्ध करना उद्देश्य से आर्थिक सहयोग करना निर्णय करलक जनागिल बा। बाढ़ी के कारण रसुआ में भारी जनधन को क्षति हुई को प्रभावित परिवार का अवस्था अत्यंत पीड़ादायी रलक कति गढ़वा गांव पालिक स्थित विपद में पर्लक परिवार प्रति सहानुभूति व्यक्त करते राहत तथा उद्धार कार्य में स्थानीय तह के तरफ से सहयोग करना निर्णय करलक हो। बैठक से रसुआ के बाढ़ी में पर्कन गढ़वा गांव पालिक से संबंधित 3 जना संपर्क विहीन रलक विषय हन समेत गंभीरतापूर्वक लेती हुकनक का परिवार हना आर्थिक ओ जिन्सी सहयोग करना निर्णय कर राखल। उसंग संपर्क बिन व्यक्ति हुकनक अवस्था बुझ खोजी तथा उद्धार पहचान कला गांवपालिक तर्फ से एक टोली घटनास्थल हो पठिना निर्णय समेत कई राखल। विपद व्यवस्थापन समिति से बाढ़ी का कारण आफन्त गुमिला को संपर्क विहीन परिवार प्रति दुख व्यक्त करती खोजी उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाएकला संबंधित निकाय से आवश्यक समन्वय करना जना राखल। हुईठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुम ज्याफी थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्नी बाटी अखस खबर मसे समाचार कक्ष का सक्कू संग्रहण संग मैं शालिक राम चौधरी विदाही टूरिरी मध्यपश्चिम ओनीटी रवि राम राम।

0: बायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: काठमाडौँ डायबिटिज एन्ड थाइराइड सेन्टर जावलाखेल ललितपुरमा कार्यरत मधुमेह थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप चन्द्र श्रेष्ठ घोराही 15 सडक विभाग रोड स्थित दिव्य फार्मेसीमा आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित रोगका बिरामीहरूले समयमै नाम दर्ता गराई स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्।
2: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू
1: सुगर रोग सम्बन्धी उपचार,
2: हर्मोन सम्बन्धी समस्याको उपचार,
1: लामो समयदेखि थाइराइड सुगर तथा सम्पूर्ण हर्मोन सम्बन्धी समस्यामा रहेका बिरामीहरूको सफल उपचार सेवा
2: हुनबाट पनि नाम दर्ता गर्न
3: बिरामी जाँच हुने मिति यही भदौ 28 गते आइतबार।
4: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सडक विभाग रोड दाङ। फोन नम्बर 82595410, मोबाइल नम्बर 98478829913 र 98095012871।

0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ हैन अड्गुरी।

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बंद जीव दुखे आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-581-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाड़ी निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ
2: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि
3: वरिष्ठ हार्ट जोन तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा
4: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
3: हात खुट्टा भाँचिएको हात खुट्टा झमझमाउने ढाड कम्मर दुख्ने हार्ट जोनिङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा
5: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू
6: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
9: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
10: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
11: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
12: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
2: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-563-218